का पिकिंग हम ड्राइविंग लाइसेंस सवारी लगाई राष्ट्रीय प्रक्षेपक मोबाइल नंबर ई मेल आईडी अनिवार्य रहेको समय कंपनी का नाम तथा सवारी का लागि प्लान नंबर अनिवार्य गरिएको मन्त्रालयले भन्छ।

0: सूत्र पालना करते नाबालिका को खाने में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट कैल्सियम आयरन भिटामिन अन्य आवश्यक खनिज तत्व समावेश होने निश्चित करें विविध खानेकुरा उचित समय में खुवाउनुहोस्। यदि बालबालिका उमेर अनुसार कमजोरका छन् कमजोर वा कुपोषित देखिएका छन् भने नजिकको स्वास्थ्य चौकी वा स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाहमा थप पोषिलो आहार दिनुहोस्।
1: स्वस्थ बालबालिका समृद्ध परिवार समुन्नत नेपाल
0: सामुदायिक सूचना नेटवर्क सिआइएन र मूल भिजन इन्टरनेसनल नेपालको सहकार्य सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सिआइएन। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो सिआइएन खबरको फोन

Thank you.

0: వచ్చే చదువు తక్కువ ఇవ్వండి కదా
1: Yeah.

0: 50 साठ बहुत बहुत रंग आए हमारे दीदी के बहुत रंग आए अधिकार भक्ति माने मुक्त रहना
1: बुझे पहले तो हम धर्म धकिया गोरी मौनी है दिलवा का कभी नहीं
0: ঘর ডা

0: apa?
1: Mesti awak ni dalam ke healthy fit lagi dalam awak ni mana sih kain ni?
0: Nak mana sih kain ni? Awak ni dalam
1: healthy ke dalam ni?
0: Kain awak tak kira apa, gawai healthy mai mai bilai tu. Rakyat tapi healthy ni berapa?
1: अपनी काट के अपनी सी ले
0: काट के फलाए जानो जो सदन बताओ मन चलिए तो खुशी
1: है सी ले
0: खुशी है तो यार
1: ये तो अपने घर से दही की नहीं दांजी सी देते पहले दांजी आए चले अपनी सी ले सब करिए
0: फलाए जानो काट के वो सी ले नेहंगा तो बैठा सी ले नेहंगा सी ले तो ये सी ले चले मेरे चल मोरी खुद दिन
1: उस समय पर आप पेशन पेशन अपने काम करते थे
0: डेहरी पालो
1: डेहरी कर पाली
0: हाँ डेहरी को पालो डेहरी को पालो चुहा मेरा
1: डेहरी में उधर सब धारे उस मतलब दाल चावल उधर डेहरी में धारे तम डेहरी पारे में धारम के
0: धान चावल धातो और दाल छत छती को फिल्म धातो
1: अरे बुद्धि पहले सुन मिला नहीं कोनो कोनो काम हो धन नहीं पुगे उस समय पर
0: उनके मचिते ये माही मुमले तो सावन में भूख लग गया बैठे लेते दिन भर ना भूख लगे ना प्यास लगे
1: खाली काम ही पर ध्यान खाली
0: काम ही पर ध्यान काम ही पर ध्यान कुछ दिन रात के मैं सोचूं रात भर भेंगी कोटूं दिन भर चक्के पीसूं दो पास पीस पाऊं
1: उस समय का लेकिन मिल नहीं रहता
0: ना मिल रहे हैं सबके समझते हैं ना मिल रहे हैं ना सब अरे तेल करना तेल कॉल तेल तो वो फिर वहाँ का मिल नहीं तो ना ही नहीं वो पानी वो बाल्टी उठाई थे बीरा मुझे पर गर्मी का कोमा से नान के पानी खाई मैं बहुत पानी खाई ना बहुत डालन विटो डालन के रहा है तो बड़ा एक पुत्र एक प्रमोट वो बड़ा पुरे है वो पप्पा तो खूब खाई पानी तो कहाँ है ये बिटिया हमें के दारू पिवाई ये बिटिया कहाँ है ये बिटिया दारू पिवाई ये बिटिया हमें कमाई खावाई कहाँ है
1: कहाँ
0: से कैसे कर जीवाएं मांग मांग कर बुरी मजबूरी कर कर तो कहाँ कहाँ से लान के हुआ बाजार लान से मजदूरी करके
1: घर किसान बने तो उसको काम किसान की किसान ही रहेगा
0: किसान तो है
1: तो जब खाना उन्हें नहीं पूरी लगी तो महाजन से सबको
2: वैसे पैसा बना के
1: एक पैसा बना के महाजन से
0: महाजन सबको मजबूरी कहते नहीं तो उसने मनती है
1: मार बना के स्कूल पेट भराए
0: मार बना के बच्चे मई तो नहीं तुमको बड़े बड़े घर के मने तो फिर मार बना तो मारे मारो एक तो रोटी एक रोटी के तो दिन रोटी
1: बहुत रेखा के बाद दिन भर काम कर खेतों
0: हाँ दिन भर काम दिन भर काम करने का खेतों मोटला इसके समय कब जाए अपने से मेन में खाना खाओ बैठो न जवाब
1: काम करी खाना समस्या न
0: खाना समस्या
1: नहीं पूरी
0: खाना नहीं पूरा
1: मशीन मशीन भी ये पहले समय ना मशीन से थोड़ा मजा भी दिला ना
0: बहुत मजा तब गाँव पहले के लड़ने की कुकलना तकिया पिसना तेल करना
1: अरे ये सब आप नहीं करे पड़े ना नहीं करे देखी खोटे
0: तेल पे तेल पे तक बोले ना
1: सब सब सब सब अपने ही घर में करके सब खाए ना
0: सब अपने ही देखी खोटे से
1: ना है सिक्किम की कुछ नहीं खाए
0: कुछ नहीं ना है से
1: अपन घर में ज्यादा मुके बना के खाए ना
0: हमने छोट छोट रही तो मैं तो छोट हूँ तो মানে আমার
1: আপনার পুরা জমানার বার্গ বাদ দিলি না

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

0: साथ दे रहा है।
1: Thank you.

Thank you.

Indeed, you are a true one, and it's your surprise.

because

Thank you.

फिर पानी हम लोग अपने नाम।

अनि नानी बिस्तारै प्रयोग नभए अनुहारै हुँदैन के लाग्छ

Thank you.

0: 비슷하고 전파수로 하다 혼자도 아담이 더 잘로 불법고 라수로 보다니브라 이때 불라순성
1: 예수
2: Thank you.

जैसे कि आत्मा से जस्ते करेंगे

किसी भी अंतिम संभाग अधिकरण के धन अनुसूचित कार्यक्रम अधिकरण संभाग अधिकार संबंधी संभव पूर्ण

पालिका एवं कार्यपालिका को कार्यालय आश्वासन दिया।

0: आकाशको भएको
1: के भएछ?
0: खबर
1: प्रहरीलाई खबर गर्ने
0: धन्यवाद।

रेडियो कुमारी संदेश।

संध्या स्वराज आज अजय खाना संदेश में अपना स्वागत न संघीय बिंदु संग्राम में उनकुमार संदेश जानकी गांव पालिका बाकी प्रसारण प्रसारण बीच हमारे संदेश का पूरी गाड़ी मुख्य मुख्य समाचार के शीर्षक से माता हरी पूजा प्रीति आज पास करी चार सात का खाना पंजर पूर्व सूचना प्रणाली चरण प्रतिया मौके वाली अवस्था में परिवर्तन पिस्टोल कारवत थानु समुदाय और संस्कृति प्रसाय सत्तरी प्लस पांच जोशी पूर्व सावनिया टूला का शुरुआत भोग गैस का अभाव और परिवहन

बच्चे थे वास्तव विद्यालय पास समय ताकि समाचार माध्यम समाचार फैल पास मरम्मत के काम शुरू किया पूर्व सेक्टर कार्यालय ने कहा था सूचना अधिकारी नाम की सुन सकती जानकारी बताया तीन से मीटर नंबर हाथा रखे श्री रामा सुचंदर सप्तम से भी सड़क अंतर्गत पार्लर सड़क खंड निर्माण कर रखो वह कंपनी पकड़े हुए माजी लटिया में एक पुल निर्माण कर रहा माजी लटिया पर पुल मरम्मत संभाल रही एक वर्ष जो कई चल रहा से अब भारत लटिया का पुल मरम्मत भी किया था तीन पुल का मरम्मत प्रति 2086 साल 29 गति समा तुरंत पुल निर्माण का कुल लागत 66,84,29,000 रूपया अधिक संरक्षण विशेष मामला अपना प्रश्न सरकार जवाब देखा बाजी आज हमारा पास पर नगर पालिका दिवस मना कर प्रश्न लिखा बाजी

0: तेरे से तेरे में इशारा सा
1: मिला जी अपना प्रश्न का जवाब कला नंबर 500 नगर पालिका कला नंबर 6 मोतीपुर का कुमार मिस्त्री सुरेश धार कुमार प्रसादी सुनिना अपना प्रश्न का जवाब
2: जैसे कि

Dios nació para habitar en el mar de Cam, sin que a su fe, a el aviso, su fe, y tu traga de camisena, como se anunciaba, y que hasta va a conocer a Plamón, donde dijo, que Dios culpable fue en contra de la maca, con su casa, a la de ver que se glitia, a la como a la de Dios, que le prolonga, su nasura, si se ha suave, su nasama, o a mover en otro punto, a la vez, para dos siglos, a que su nasura, y una fronteja, a la chance, a la casa, que parece que la ti, a la carta, a la casa, a la de perfeja, son las técnicas de la teca, a la chance, a la pisisma, a la problemática. Kayarika Joseph will now parika white number 8 with Kima Sotari plus Pasa Samanka Samaria to last Rubra Tulba Thamu Chanyamanka Ulas Nisa of Haritama Acha Muti Kama Samanka to last Rubra Muti Kama Purkhakeha Krihal Samanka Samaria to last Sotari plus Pasa Dure Pako Kushila Kama Pamansa Kamsaraj Patriya Pukhila Pata Samaria to last करना और सौंपी चिया आज पूरा पूरा काम को मंत्रा समाज से भी दयन मोदी को थरिया पत्र जमाजी आप मंदिर एम मरहबिल प्रत्येक वर्ष खेलना तला ससुराल देखल निफिल महाकल हमरे और पूरे हर वर्ष संभव पूर्णा तथा को थरिया संदेश का सं कठरिया संदेश का संपादक अर्जुन कठरिया जाएगा उसे कर यह गांव का प्रतिशी के कल पके आपन विद्या कर सामन का समझे तोला आज आपका आंख में देखा पाता खुशी बदल पकड़ लगाता उसे का जो सिपुर गांव का उपला नंबर एक का अजय है ना राजी पूर्ण पके तला शुरू के बाद जो सिपुर उपला नंबर एक का पतंची रामचंद्र चौधरी सामन का समझे तोला उद्घाटन कर लगा महाजी बर्मा पकड़ कर सामन का तोला देखा लोकपाल सुनेगा उसे दिखा काम को परमंशा

0: पहले अध्ययन से बिक्री वितरण में एक प्रमुख समस्याएं तथा समाधान कर सरकार को तथा डिपो का अनुगमन तीव्र बढ़ने के बाद साथ ही झाड़ परिणाम गैस आयात विचिरणक नेपाल आय निगम का डायबिटीज सहजन गैस निपय रखना सर्वसाधारण का गुनासो सत्र सम्मेलन कर उपयोग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री गौरी कुमारी यादव पांच का अनुमंडल गैस उद्योग को डिपो का अनुगमन का अनुपति मंत्री यादव बारह जो स्थित नेपाल गैस गैस का आयात बोर्डिंग और बिक्री वितरण का तथ्यांक पहले जानकारी लेने का उपयोग का निरीक्षण पांच वहां निगम का एक स्थित कार्यालय परिसर पर अलग डिपो में पोखर गमन कर मंत्री यादव का स्वकीय सचिवालय चले
1: संदेश फिर बाली मदद में आरोप से बचा लाइक पर

ಸಂಚಾರ ನಿಯೋಜನೆ ಅವಶ್ಯಕ.

सत्ता साझेदारी देखी यहाँ चुनाव गठबंधन को अवस्था समेत प्राप्त करें सत्ता में सुरक्षा लगे जोसुक समझौता करने पर नपर्ने भन्द आलोचित भाग वरिष्ठ केन्द्रीय दलहरूले कतिपय समय सरकार निर्माण देखि प्रदेश में निर्णायक मत

Super,

Yeah, I'm going to go to the hospital.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Ini hukum kawajim oleh lebih bunda saat ni lah kan.

सजी बनाते इंसाना को खाता बना ध्यान के लिए जीवन खत्म हुई सत्य ने खाना खाई गए सत्य करी तुमने कहा घटी रामा से क्यों रही तो रखना दिन तक करी आज मेरे कार्य की बात

Thank you.

Gracias.

Thank you.

0: ràdio Grupada Eixamplada, són hipnotaris en pis.
1: Sandis.

अनुसूचित

Thank you.